Then Majalaya, long time we haven't read this Majalaya, Kuch Bhi Kar Sakun Main. मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे. मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे. तेरी मशीयत है सब पे गालिब ये हेच है सब मेरे इरादे. बहुत दिनों रह चुका निकम्मा बस अब

क्या, यूं ही मरने वाला जिया करता है क्या, यूं ही मरने वाला तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। तुझे हर वक्त ये ढूंढे रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। सो दैट इज व्हाट वी मस्ट ट्राई एंड अवॉइड एंड डोंट अलाउ दैट टू कम इनटू अवर हार्ट्स। बिलीव दैट मदीना शरीफ, द वेरी नेमत ऑफ स्टेइंग हियर इज सच अ नेमत, देयर इज नो नेमत दैट इज ग्रेटर देन दैट फॉर मुस्लिम्स ऑफ टुडे। व्हाट अदर नेमत कैन बी ग्रेटर देन दैट, दैट एनी टाइम दैट यू डिजायर विद इन 5 मिनट्स टाइम यू आर देयर द रोजा।

सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। ओ अल्लाह, सो मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड नाउ दैट वी शुड थिंक ऑफ अवरसेल्व्स एंड नॉट अदर्स। ओ अल्लाह, एवरीवन इन योर गार्डन इज अ फ्लावर, एवरीवन इज अ फ्लावर, द ओनली थॉर्न इन द गार्डन इज मायसेल्फ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शिहार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।

याद कर। नफ्स दुश्मन है, दुश्मन को नाशाद कर। रूह को नूरे तकवा से तू शाद कर। नफ्स दुश्मन है, दुश्मन को नाशाद कर। अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर। दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर। दिल को नूरे खुदा से तू आबाद कर। दिल को

याद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर दिल को नूरे खुदा से तू आबाद कर और गुनाहों की ख्वाहिश को बर्बाद कर हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर सर को चौखट पे उनकी तो सज्जाद कर हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर सर को चौखट पे उनकी तू सज्जाद कर अपने मालिक से उठ कर कोई फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर रूह को नूरे तकवा से तू शाद कर रूह को नूरे तकवा से तू शाद कर नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर कल्ब जां को तो उस दर पे अब्बाद कर कल्ब जां को तो उस दर पे अब्बाद कर और सुकून दिलो जां को खल्लाद कर कल्बो जां को तो उस दर पे अब्बाद कर और सुकून दिलो जां को खल्लाद कर अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर अपनी खुशियों को अख्तर तो बर्बाद कर अपनी खुशियों को अख्तर तो बर्बाद कर अपने रब की खुशी से दिल आबाद कर अपनी खुशियों को अख्तर तो बर्बाद कर अपने रब की खुशी से दिल आबाद कर अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर

तेरी बरकत से आए सैयदुल मुरसलीन, तेरी बरकत से आए सैयदुल मुरसलीन, सुबह रोशन हुई कैफ शाम आ गया जब जुबां पर मुह

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल जलालुहू।

यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर वक्त जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादा में आखिर, विरदे सुबह है मेरे ला। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु।